0: दिनका कामो चाटल बयाल बहक निसेक जाए मै त बिहान नि खेत जाइ पुना खाए
1: बाबा लोई छाता फेलै जाओ खेतवा से लौटा बेर महा कर्रा घाम रखा
0: ए का बिस्रिनु कलक त छाता बिसाई टुका हुँ लान त छाता ओहो मै त यी पानी बोटलिन जीवन मिलाइ बिस्रानु
1: तु बिस्राजी ठोकैका मै त मन पानी जीवन जल मिला खाडेर रोक्नु बाबा बेन्सु यी पानी भरि सक्कु पिहोना पस्ना नसे निकर्क जो सुख

0: का
1: पटावा मही अभ्यान का काम दिन का आराम
0: हाँ तो बिहान काम दिन का आराम
2: गर्मी मौसम में लू चिटिंगा घामन से बचकला छाता नथी कपार छोप पनेगी ध्यार से ध्यार पानी पी शरीर जू ढरक लाग मौसमी फलफूल खाई ओ घर स्कूल के छानी जुरार बनेना जुगार लगाई
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: यो हो तपाईको आफ्नै रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज